0: हला हे दिल याली हम आला थले मेले ई खाती हाले हम आला थले आले खाती आला हे के थिया मेला बाहले हेले सिलेलो असुत बाला खडा वाली बा हे मेने ले थे मा खाती ला दे सोए नवत लदे असुत बाला येशु स्वांस के नाम में फले आओ
1: देखे मा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हम आला के थिया ले हम आ
1: तेरे बे दे दे रवा दीदा हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले मा थिलिया ले ओबर सुति वेवा स्वामी इन वास ओबान सी उदाउ करन ने किने कनाट

0: जय श्री वेवा।
1: इसे स्वामिनी उप सबिनम सुशुद्ध सिल सुशुद्धता वे उल्पत बोहन से में यही नोहन से गे आत्म नंगे अनुभावेन मे पांडु परिशुद्धवत करण में नपियाय दिब अपे से अदुने मे पांडु अपुदेसा अपे स्वामीन वन जेसुस क्रिस्तुन महान से गे श्री शरीर श्री रुधिर बावट पत्वनु संदहाय उन महान से दुख सहित मरनेट सिय कमेत्तिन पू कमेत्तिन पवरादी मिट पेर पूपे रागेनो बहान से तुति पुदा एक खड़ा मिसे कीमिन सिय श्राव के इंट दुन सेक ओब सम में इंगेन अनुभाव करन सब बिन में उबुदेसा पवरादेनु लबन मागे शरीर आई රාත්‍රි භෝජනයේ වැළඳූ පසුව උන්වහන්සේ සේම කුසලානද රැගෙන නැවත තුති පුදාමසේ කියමින් සිය ශ්‍රාවකයන්ට දුන්සේක ඔබ සැම මෙයින්ගෙන පානය කරන්න සැබවින්ම මෙය අභිනව වූද අනන්ත වූද ගිවිසුමේ මාගේ රුධිර කුසලානයි පෞකමාව සඳහා ඔබ උදෙසාද සියලු මනුෂ්‍යයන් උදෙසාද වගුරුණු ලබන්නේ මාසී කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්නේ